0: ऐसे बाज़ ला, ताज़ी से यूं रोया लो या गुंगा तेज़ा में बने तो तंदे ती रिंदा दी आ हा को बा अंग काशी युवे तिंडे जी गुरिम जी गुई ओर बा ताज़ी किरांग के तंदे शे साब सुवे गुरिम नालो लो या शे साब तिंसु की केजू रची आ कंडे जी लिया चुगी ना
1: लसे ता तिंडे से ना चला सोसु के सुयू रिंदे के रिंदा दा में भी शबे चला तो ये के रिंदा दा हा को बने चेजी ता तिंसा शे घर सुने ले ता शे दी नंबर दी सुयू रोया रहा है रेशा यं तभी युगों तांजे सुयू के रोया दी कंट्रेस शे दी नलो लोग तो नंजो सुयू रोया दी नंबर कंट्रेस थोंडे मिशन बेल पार नंबर चोग तो ओ दी रेशा दी सोंजा नंजो थालो रारे थालो रां नंजो तंदा कबरानी दी चुआ ला कलो नंजो की कलो कलो की शब्दों रां सोया की शेरान सोया की बाबजा नहान सोया की दिस चोल कुकब चो दिन लाजिक बच गया ही अन्य खलू ही माचा शन नगना जो कि तभी तो सुजुरिंग ना हो बेटे केच बस ये ना जी ये लाज शादी आ रहे तादि मैंने माचा शन नगना जो बेटे तेरे वाला खलू दिने नगना जो कि जम्मे लिंबू यंचिंग लासो Ryan dixo sebe gyurim nalo, kanko chunju jing nalo, Ryan da sarsom gandes chego to sudu zamba, nyan gine shen kesi shedi nalo, denke ki chisi juyo ba, denke ki shed danyi juyo na, nara sosu ki sarsom ki samgui kyakung di chung shena chukil, o to sile sha. Ta be sha sha na nganzo dili, shedi, payu shigizi ki shedi, o ya, ta payu shigizi nalo, sosu lakyo ki ne tsuyu ki shiye, ta payu shigizi nalo, jana sile shi, jide mo jik toji, nga kare kare jik tongji, chanjo, o, jenje jik, kor jang shiye jo jik shiye jo re. Ta di kesi payu shime jik minye yu zamba, o, shiye enje shi duu samsaro jima shiye ki shiye di tebe ki, chonna da, nawa jenje le ingma re. Ta yin, shiye di kajang rang la payu shi chi je, shiye di go ne gubtu ki, babja rang ki zangma shiye je, shiye sin me ba, shiye dang danye me na, ta di nalo jamye ji ne jadu. Nanzuki shishi jine jato, lingbu jine ki jatang bit jitwendo zamba dina lo o nga nga ma puyu dito zamba nito nito shaso koro soso ra nige chonada le dekirwa nanzu libe nalo lo di tongyong rwa nga mene zutike oti jito zamba ta shedi, shedi rana tebe ta pecha shana nanzuki dita jibji gyari shed puyu sini shedjing mshu yomar inele shed nini ju nalo lo samu manja ju da soso libe nalo kuryo ki manja 주통으로 어원 됐었죠. 세상 그분한테 제소야 카드로 도저히 자당랑 짱마 제지 세수 매 봐. 제 땅에 매 제지 세소야 돼. 어원 됐습니다. 근데 조직이 수교를 해야 되나로 루야 어디